0: दीनी जब हर पाव जल तरना।
1: कैसा 100% जैसे और फिर साढ़े सामने ही है। टीचर ने तो एक बार दस देता तो उनके बस में काम तेरा हो गया, तू पास हो गया बस, हूं अगले साल फिर गैस लावांगे। नहीं, गुरु साहबान ने ऐसी कृपा की इथे रखे दिता, संभाल के रख दिता, भेजो जदों जेनू जिथे जरूरत पवे। ये गैस हमेशा ही काम आई जाने ने, हमेशा ही, इसलिए इन्हों इथे महफूज करके रख दिता गुरु अर्जन देव। सच्चे पातशाह एक होर तो कहने ना।

अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा।

कै मन लाजुम रसा, अवरा पे कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख, किसी मुरुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत कड़ासा। जे अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वाहगुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच, इस शब्द विच ऐसी प्रेरणा

Imagina bajar a la river, carita. Sí, pero no vas a subir ya, ¿eh? Que salga a ver नाम को कीता सब कीर्तन कीता से सुनिया सब लाभ हो जाएगा करो अर्दा जिन्हें धरती उपटी है और पानी जरूर मिले जिन्हें धरती उपटी है और पानी मिले जिन्हें खोजिए है और माल जरूरत है जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है और ये अरदास मेरा धन गुरु नानक पर है पहले सेवक बनेगा पीछे प्यार ना सारे बोलो।

जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदिन मंत्र पुस्तक करया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहेगुरु ने पुत्र की दात दिती है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओदे नाल प्यार जरूर करो जेने पुत्र बख्शे है आखर जीवो गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपनी करो पुस्तुत करनी है गुरु दी स्तुत करो ये गुरुमुखता है ये गुरुमुख दी चाहिए तो प्यारे साध संगत यह वचन ना बोलिए जिदे नाल किसी का मन दुख जाए हरी जी ने कहा है सब ना मर माणिक ठाहण मूल मचांगवा जे तो प्रिया जी सिके तो न खाई फिर गुरु नानक दास जी जिदा गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे नहीं तोड़ा ना प्यार परे बचन चंगे वचन करो भाई चंगयाई दुनिया में बढ़ेगी सिख दी है ड्यूटी ड्यूटी है आप जपो अमरे धाम की।

निर्मोल कीरा आनंद गुणी गहीरा अनाज पाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदानिया के ये समूल वस्तु दे ना मुल पन इस वस्तु का मुल पन अरुणा नु कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त श्रीमान जिन्होंने कीर्तन नु रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्हों दिया चोरिया मालिक पर मरदानिया है कि महाराज एक सौ रुपये दिखा है अरुण कहने लगे आपा की करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज मुंह बना के मरदाने ने किया सदगुरु मसा मसा माया का मुंह वेखे है ते तुसी कहते हो वापस अरुण कहने लगे मरदानिया आपा इन किसे चुकी फिरा मरदाने ने क्या महाराज तुसी थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओ कि दो बजे कीर्तन सुनावानी हम तो कदे नहीं कहांगा महाराज भुख लगी अलू कह लगे नहीं मरदान अति मालिक ने उसमें जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले चटू न बंदे पंछी से दरवेश और जिन्हों तकवा रबदा तिना रिजिक गिरी गांधनी बांधते जमे देता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे दे एक सौ रुपये की थैली वापस दिखती सात राजेंद्र होर प्यार आया नौकर बुलाया घर का कोई रबी दूर आया है और सौ सुन के मन धरिया है प्रसादे का थाल परोस लै मिठाई भी रख लै दुध का गड़वा भी भर लै चिट्टा रुमाल पा के तू चल मैं दुकान बंद करके आना हाँ तो उस दादे के दर्शन करना अगर कब पहुंच गए सहवा दिन के पदार्था का थाल रखिया मथा टेकिया हजूर ने अमीर दिशी न तकिया सिर को नजर करम तिरकार नानक नदरी अगर कहिए चोलिया पर उठिया मस्ती बैठा चाहते इधरों साल सराय भी आए हजूर ने दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया को तारन आ रहा दुनिया को दाता देने वाले मेरी झोली की है अदूर कह लगे सारसराय की चाहना है पादशाह दुनियावी दाता सारी है हीरे लाल पन्ने पुखराए धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुश ही भाई मन नहीं हो गया मन संतुष्ट नहीं हो मन तो संतुष्ट ही नहीं हजूर कह लगे हां सारस राय मन का भोजन होर है मन ये नहीं रजना मंत्र मन पदार्था नहीं रजना गरीब नवाज कर करो कृपा हजूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि बाहरों हजूर कह लगे सारस राय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर है महाराज फिर मैं हजूर कह लगे जो तो भी दात लेनी है तो नौकर के चरणा से है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निम्रता लैके होंगे तभी सरदार सराय का जरा मन रूपी चोलिया थी वो बिल्कुल सुखैल अंदर श्रद्धा से प्यार थी रो पिया हरी परिवार ये तो मेरा बच्चा है पर जे तुसी आखो तो मैं तुहाडे कुत्तिया ने पैर च मसा सकिया तो दास भक्त जेदे नाल तेरे मन भी तुर दूर हो हजूर ने बख्शिश पीती सार सराय जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुसी भी मन करके गिरे हो जाओ बख्शिश होने लगी है हजूर ने सारसराय के सिर से फिर प्रयास रखिया अभी उसकी चीज नाल तकिया ते किया सारसराय जब सतनाम कर हुकुम मस्त का हत्ता विचो मार करिया बड़ियाइया सह तुथे नाम नाम दी दात जो जो सारसराय सिमरन नाल जुड़ता है त्यों त्यों मन सुखी होता है सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोरे तो पीवा मेरा सतगुरु जी तो अज सारस राय दिया चोरियों कर दिखिया मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना भरे अज खास पूर्व भाषी का दिन आखो श्री भरे सारस राय दिया चोरियों भरिया गई थोड़े उत्ते क्यों बखे थोड़े उत्ते ही रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अनेरे को दूर कर दी जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी चोरियों पर तो आओ प्यारी आज संगत आप अनुभव करें।
सर्वत्र माई पाई जो अमृत है।

मांगो राम ते एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

जदकंडी सतवट हे जनेऊ जी कहई ना पांडे कत ना ए टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए तन सो मानस नानिका जो गल चले पा।

0: जेकर सूतक मनिए शब्द सूतक हो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने आने के जिया बाग न कोय पहला पानी जियो है जितारिया सब कोय सूत क्यों कर रखिए सूत पवेर सोए नानक सूत के न उतरे ज्ञान उतारे दो
1: महला पहला मन का सुख लोभ है जेवा सुत कूड़।

बादशाह साहब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का ये पवित्र प्यारा शब्द आप सबना ने इसका रस माना। सब तो पहला आओ इस शब्द के अर्थ विचार महाराज जी ने पेश किए हैं।

şabrıdı. Ben de hissediyorum. Guru Maharaj'ın longing present करते हैं, longing पेश करते हैं, एक प्यास, जरूरत, एक तड़प का जिक्र करते हैं और आखते हैं मन लोचे हर मिलन को, मेरा मन परमात्मा नु मिलना लोचदा है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर भुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजां ले वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजों के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गया, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसमें जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि में साजन वाला है, जो उसने पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने इसको बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता, हर जी पिता, जो सपना का पिता माता है, उसनु मिलना चाहता है और उस अवस्था दे विच मन दुनिया वालों वैरागवान हो जाता है। दुनिया वालों मन जो है वो उदास हो जाता है, भाव उसनु कोई और किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था दे जाके जो जिज्ञासु है उसकी रुचि बदल गई है, उस मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रेया मांगे, मेरा मन जो है वो एक उस प्रेया नू अपने प्यारे नू ही मंगता है, होर किसी चीज के नाल वो सैटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रेया मांगे, मन लोचे हर मिलन को। मन जो है वो दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारन लई, उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है, अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है, क्यों दर्शन पाईया, किमें उसका मैं दर्शन करा, किमें मैं उसनु मिला। प्यास इतनी गहरी हुंदी है, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बोलाईया। इस दे विच ए आख्या है कि ए मेरे साहिब, जे मैनू एक बिंद, एक पल, एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवे, मैनू मिल पवे, मैनू मौका दे देवे, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लें, मैं लख विड़पते साहिबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ां हासिल कर लिया, जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दें, अपने दीदार दे दें, अपने आप नू मिला लूं, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है,
किसी भी चीज तृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, फेक है, मोमेंटरली है, अते दुख का कारण है। दुनिया का हर सुख जो है वो नाल ही नाल दुख भी दिंदा है। इस करके कहते हैं मैं चारे कुंडा पालिया, मैं हर थां ते पाव, मैं सब कुछ देख लिया है, तुद जेवड़ ना साइया, ऐसाई तेरे वर्गा कोई नहीं है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक प्यास है, एक उमंग है, एक तमन्ना है, एक जाचना है, एक लॉन्गिंग है कि तेरे दर्शन मैनू किवें हो। शब्द का पहला हिस्सा जो है उस दे विच महाराज जी एक जिज्ञासा पेश करते हैं, अते ऐसा जिज्ञासु महापुरखां दे संतां दे पास आके बेनती करता है। उस बेनती नू आओ गाइए, दिलों गाइए।

इतना खूबसूरत जवाब देता है, कहते मन अर्पयो। सुखमनी साहिब जी महाराज ने आख्या है ना, कहते हैं

गुर महल बुलाया। गुरु अपने महल च उसनू बुला लेता है और उसका निवास फिर गर्भ जूना दे विच नहीं हुंदा, निवास गुरु दे महल च हुंदा है। अते ओ गुरु दा शहजादा बन के गुरु दे नाल रहिंदा है। गुरु दे महल नू असी नहीं जानदे, असी नहीं देख सकते किस स्थान ते किस तरह दा है। कहिंदे पर गुरु उसनू अपने महल च बुला लेंदा है। जड़ा इंसान अपने आपे नू पहचान लै, ओ फिर गुरु दे नाल रहिंदा है। सभे आसां उस दीआं पूरीआं हो जांदीआं हन। सभे आसां पूरीआं गुर महल

शब्द है कांडा मोहल्ला चौथा पड़ताल। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमत गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो किरपाल। किरपा होवेगी मन ना जपो सतनाम। कोई भुलेखा नहीं रहता, थोड़ा जा ध्यान देने की लोड़ है। किरपा होएगी, हो दो बार आख्या, होवेगी किरपा। पर मन जापहो राम गोपाल, वो सृष्टि नु पालन वाला जेड़ा जर्रे जर्रे च है, ओनू मन करके जपो। मन और जबान एक करके आखो सतनाम। यह मोलक रतन है। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो कृपा। ये अस्थाई है, ये चार ताल च। पहला अंतर है तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। तेरे गुण बेअंत ने ते मेरी एक जबान की कह सकती है। तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जानी। तेरी गति नू कोई नहीं जान सकदा, सब आखो सतना। हर की गत ने को जानी, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जानी। हों हर जब पई निहाल निहाल निहाल, तेरी गति नू तू अगाध बोध है, कोई जान नहीं सकता। पर यह जरूर है कि जेड़ा जपूगा ना वो निहाल निहाल निहाल हो चुका। तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत ने, कोई जान ही नहीं सकता, बेअंती है। आप शब्द रोज पढ़ते हैं, तू सुल्तान कहा हों मियां, तेरी कौन वडाई। किसी बादशाह नू क्या जवाब मियां जी, तू सुल्तान कहा हों मियां। एक बादशाह नू क्या जाए मियां जी, ये कोई वडियाई तो नहीं। गुरु नानक साहब कहते ने तू एडा वड्डा है, जो तेरी उस्तत होने तक हो रही है ना वो इन्नी की है कि किसी बादशाह नू मियां कहा जाए। तू सुल्तान कहा हों मियां, तेरी कमर वडाई। इस शब्द विच महाराज कहते ने तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जप पई निहाल निहाल निहाल। दूसरा अंतरा है हमरे हर प्राण सखा, स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे हरे राम नाम धन माल। जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, जन नानक हर जप पई निहा निहा निहा। हुण इसका कीर्तन एक सैकड़े वर्ष पुरानी गुरु साहब के समय दी ये रीत है। गुरमुखा वालों हुक्म होया सी ये असी रीत कल वचन किया सी। सरदार प्रहलाद सिंह जी सास सुरेंद्र सिंह होर ने ये असी जरूर सुननी, क्योंकि सेवका ने अज का कीर्तन ही है, फिर सवेरे तड़के चले जाना असी। इस वास्ते ये आपकी
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਇਹ ਆਪਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ।

अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर दशमेश पिता दे चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल के सवालों का

पहला नियम है गुरसिख दा कि गुरु की संगत करनी। सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके, ते जेड़ा सतगुरु गरीब नूं आए सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउण वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सतसंग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा है, गरीब नवाज कहिंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर दें साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंद नहीं देंदा किरत दस ना होंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह च नहीं हो सकदी।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उस नूं मां भैन दा रूप जाने, धी नूं धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नूं आज सच्चे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नूं मां भैन ना जाने, धी नूं धी दा रूप ना जाने, गरीब नूं आज सच्चे पातशाह कहंदे हन, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नूं आज सच्चे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नूं बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा, बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बनी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा है ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा है। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते कोड़ा हो जांदा होए सिख सिर टोपी तरै सात जन्म कुश्ती।

एक वाहेगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते हुए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इना दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हू बहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वादू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे।

शस्त्रहीन एक बू न होई रहतवान गुरखा सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पांच ककार दिते ने ना खालसे नू पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे वर्दी होवे उनू लाजमी है भी जदों ऑफिस विच जावे जदों काम ते जावे जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे उदों ओ दित्ती हुई ड्रेस नू पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नू पंज ककार बख्शे ने ते गरीब नवाज कहंदे मैं ए बर्दाश्त नहीं करांगा भी मेरा गुरसिख पंजा ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे भी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन एक

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशिया का सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी का सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशा खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिणिया जाएगा, ओही असली

परमात्मा दे नाल हित लाउणा, चित नाल परमात्मा दा जाप जपना, जिन्ना भी जपना, जिन्ना भी वाहिगुरु कहना, हिरदे दे नाल कहना। गरीब नवाज साहब सचे पातशाह महाराज फुरमान करदे ने, गुरसिख रहत सुनो हे मीत, उठ प्रभात करो हित चीत, वाहिगुरु गुरमंत्र सुजाप, इशनान करके वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करना, फिर जपजी साहब जाप साहब दा पाठ करना, संध्या समय रहराज साहब जी दा पाठ करना, ते बराजन वेले सौण वेले कीर्तन सोला साहब जी की गुरबाणी पढ़ के अरदास करके गरीब नवाज दे चरणा च सतगुरु आप जी की कृपा अनुसार चार पैर दिते हुए दिन आप जी दे बतीत हो गए ने, चार पैर रात्रि आई है, सतगुरु तेरी कृपा द्वारा बतीत होवे, तेरे ही दीदार होण, तेरे ही नाम दा हृदय अंदर वासा होवे। गरीब नवाज साहब सचे

मेरो दर्शन नहे ते पापी त्यागे भिख। वो ते अपने आप नू सिख ना मनन जिन्हां ने केस मनाए हुए ने, मेरे तां सिख ओ भी नहीं जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया, जिन्हां ने पाहुल नहीं लई ते केवल केस धारण कीते हुए ने, ते सबना मोहरे आके बहण दा दावा करदे ने। उची उची आवाज गुरु महाराज की दिती हुई बाणी दा याप जाप करदे ने, पर आप पगाउंदे नहीं। केस रखे हुए ने, पाहुल नहीं छकी हुई, खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया होया, वो भी मेरे सिख नहीं। ते जेड़े सहजधारी ने, जेड़े अपने आप नूं कहाउंदे ने वी केस मना के वी गुरु के सिखां सिखी अंदर है, वो मेरे सिख किवें हो सकते ने। साहिब गरीब नूं आज सच्चे पातशाह महाराज ने पवित्र वाक भाई नंद लाल नूं सारे दे सारे दिते। भाई नंद लाल ने यह वाक गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज दे लिख ले। संकल्प कीता गरीब नवाज, समयां दा समां बतीत हो जाएगा कि यह रहत मर्यादा सिखां दे अंदर ज्यों दी त्यों चलेगी। ते गरीब नवाज कहन लगे, नहीं, मेरे सिख मेरा खालसा राज दे अंदर आके भटक जाएगा। ते जदों यह भटकेगा खुआर हो जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, क्योंकि इस नूं राज पाउंदा नहीं। ते जदों इसने राज नाल प्यार कीता, उदों इस दा प्यार गुरु नाल टुट जाएगा, सिखी दी दात मूलों निकल जाएगी। कुर्सी नाल प्यार हो गया ते गुरु नाल प्यार नहीं रहेगा, तख्त नाल प्यार नहीं रहेगा। जेड़ा गुरु के तख्त दे सामने अपनी कुर्सी डा लेगा, वो गुरु का सिख नहीं होएगा, वो खुआर हुंदा चला जाएगा। ते फिर समयां दा समां बतीत होएगा, इतनी खुआरी होएगी, उस खुआरी नूं हरन वास्ते फिर गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कलकी रूप अवतार धारण करनगे। निरंकार दे हुक्मां मुताबक लिखिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने 33

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे पवित्र होवे ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन रहत बिना ना सिख कहावे रहत बिना दर चोटां खावे रहत बिना सुख कबू ना लह कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ओनू कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो ओनू छेक दिता जावे जेड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख इसने ए रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया भाई देसा जी ने लिखिया बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे ते गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी दे वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान

जगत नाम देवी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नाम देव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं मैं अंधलहे की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अन्ना हां अंधा हां पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मैनु सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होन तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड़े हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जब तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है ओ मेरा अंधले का आसरा। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो गए, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हैं

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए। महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना, नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

अपने मन व्यक्तियों नु जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार नु अपने अंदर टिका के रखो जो सुने है। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के घर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगा नु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिराकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करन दी इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजां दा इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिदी है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिदी है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिदी है। जो इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

मरना जाए ही जना विसरत राम, वो की कर दे, मर क्यों नहीं जाते? बेशक वो मर जान तो कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्हां नूं राम विसरिया होया है। मरना जाही जिन्हां विसरत राम, वो जी के करनगे भी की, सड़नगे तपणगे जलनगे अते होर कर्म पैदा करनगे अपने आप ही, कहिंदे बेहतर मरे ही जान। मरना जाही जिन्हां विसरत राम, जिन्हां नूं राम विसरिया होया है। नाम बिहून जीवन कौन काम, नाम तो बिना जीवन का कोई भी परपस नहीं है, कोई कम नहीं है। नाम बिहून, नाम तो सखना जिहड़ा जीवन है, कहिंदे जीवन कौन काम, नाम बिहून जीवन कौन काम। एक पंक्ति होर सुन वाली, आप जी सुन के हैरान जरूर होवोगे। कहिंदे हन

कोई आखे इंसान के मैं कोई चोरी नहीं करता, तो मैं चोर किमें हो गया? मैं अपना काम धंधा करता हां, नौकरी करता हां, दसा नहों की किरत करता हां, ये मैनू चोर किस तरह कह दिता है? इसका जवाब कोई मंगेगा ही ना। मैं तो चोरी कभी की नहीं, किसी का एक सेंट नहीं चुराया, तो मैं चोर किमें हो गया? महाराज जी कहते हैं बिन नावै सब चोर, बिन नावै सब चोर। हुण किस तरह असी इस चीज का जवाब लभीए कि असी चोर किमें होए? सब चोर एक अद्धा नहीं, सारी दुनिया चोर है। चोर इस तरह है, दातां किसे दियां हन? ये बना अपनियां लैंदा है कि मेरियां हन। किसे दी चीज नूं तुसी अपनी बना लो ते कहो ये मेरी है, फिर चोरी नहीं हुई तो होर की होया? किसे ने कोई गहना पहने होया है, तुसी किसे ना किसे ढंग दे नाल उसनूं उतार के आप पहन लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? किसे दा घर संभाल लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? ये जीवन ही परमात्मा दा है, असी कहने मेरा माई लाइफ। When we say my life, असी इसनू फैब्रिकेट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, इसनू बनाया है, क्रिएट किया है, then how come we can say this is my life? जदों असी कहने मेरी जिंदगी, किसे चीज एक किसे वस्तु किसे होर दी है, लेकिन असी लाइफ नूं भी कह दें कि ये मेरी है, जिसका सानू पता ही कुछ नहीं कि ये चीज की है, उसनू असी कहने मेरी है। ये चोरी नहीं है? ऐ तन इंसान सोचता मेरा है, भला इंसान नूं पूछे जाए तेरा किस तरह होया, कदों तू इसनू बनाया सी? तैन तो पता भी नहीं जदों ये बन रहा सी, ये तो किसी ने तेनू गिफ्ट दिती है। इस दा डिजाइनर कोई होर है, इस दा क्रिएटर कोई होर है, इस दे पिछे इंटेलिजेंस किसे दी होर है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन नू चलान वाली विजडम कोई होर है, तू कहना मेरा है? ये किस तरह कह दिता मेरा है? ये क्यों नहीं कहता कि ये मैनू नहीं पता किस दा है? जिस दा है वही इसका मालक है, फिर तू ज्यादा सौखा होवेगा। पर महाराज जी कहते हैं प्राणी जाने ये तन मेरा, प्राणी कहता है तन मेरा है, वस्तु किसी होर दी है, लेकिन ये कहता है मेरी है, ये चोरी हो ही जाना हुई, चोरी हो ही जाना हुई। महाराज जी ने आख्या जान के रुक्त बिरख तन माल, ये जितने भी जितनी भी वनस्पति है, प्लांटेशन है, जिसनों असी अपनी इंडस्ट्री दे विच लैके आने पाव रॉ मटीरियल, ये सारे का सारा रॉ मटीरियल असी खुद बनाया है। लोहा, सोना, कोयला, रबड़ दे दरख्त, अते दरख्त जिहड़े लकड़ी पैदा करते हैं, फर्नीचर पैदा करते हैं, रॉक्स जिन्हों तो असी मार्बल लैके आने हैं, वो असी आप पहला जाके बना के आए हैं। इंटायर वेल्थ जिहड़ी है छुपी पई, वह परमात्मा की साझी हुई है, उसनू फिर बाद च लिया के असी आखते मेरी है। ऐ चोरी नहीं हुई तो फिर होर की होया? जिहड़ा संत है वह ये कहता है मेरा मुझ में कछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुण साडे कोलों कुछ चले जाता है तो असी रोना शुरू कर देने हैं कि चले क्यों गया। जे तुसी पहले दिन तो ही ये सोच के रख दे कि ये तुहाडा है ही नहीं, तो फिर तुहानू तकलीफ किवें होंगी? जिस चीज नूं अपना कहता और अपनी है नहीं, अपनी बना के बैठ गए खाम खा, और फिर उसके जान उत्ते रोना शुरू कर दिया। इस तो वड्डी अज्ञानता और की हो सकती है? तो मैं आप जी के सामने पंक्ति पेश की सी, महाराज जी आखदे जिन कीते तिसे ना जानी, जिसने ये चीजा बनाईया हन, जो इन्हों का मालक है, उसनू तो ये जानते नहीं हन, ते बिन नावे सब चोर। नाम तो बिना, नाम जपन तो बिना, नाम जपन तो बिना वो अवस्था नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जागरूकता

फिर आखते हन नाम बिना सुना दरबार। जिस दरबार दे विच नाम नहीं है वह सुनना है, उत्थे एम्प्टीनेस, उत्थे खालीपन, उत्थे लोनलीनेस, उत्थे डिप्रेसिवनेस। जिस घर च नाम नहीं है, जिस शरीर च नाम नहीं है, वह भी अंदरों सुनना है, वह भी अंदरों खाली है, वह भी अंदरों एम्प्टी है, उत्थे भी लोनलीनेस। आज का कीर्तन इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो गया। इन दी नटशल सारा जो मैं फिर आख दिया, नानक के घर केवल ना, नानक के घर दे विच गुरु बाबा जी दे घर दे विच तीर्थ भी नाम ही है, इलाज भी नाम ही है, अते रोशनी भी नाम ही है, पूजा भी नाम ही है, गुरु दी सेवा भी नाम ही है। अते जो नाम तो बिना है, महाराज जी आखदे ओ चोर है, उसका जीवन जल जाएगा, उसका जीवन डराना लगेगा, अते उसका जीवन किसे कम नहीं है। एक पंक्ति में कह के कीर्तन समाप्त कर लगा हां, कहंदे विसरिया जिन नाम ते भोए भार थी, कहंदे जिन्हां नूं वाहिगुरु का नाम विसर गया है वह धरती उत्ते सिर्फ बोझ हन, जो इस धरती नूं भी तकलीफ दे रहे हैं, धरती उत्ते बोझ हन और कुछ नहीं। सो इतना कुछ याद रखना, कल नूं इत्थों अगां चलांगे। पूरी चुक दिखेवां, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पंक्ति